0: कुछ होता है का जो 90s का बॉलीवुड के जो अपना 90s हिट का जो शो होने जा रहा है ऑन अक्टूबर 3rd एट मिर्ची रेस्टोरेंट नॉर्थी जिसको प्रेजेंट किया है कॉफी विद जलाल ने एंड केडब्ल्यूजी एंटरटेनमेंट और हमारे टाइटल स्पॉन्सर कंट्रीज टोयोटा एंड साउथ पॉइंट टोयोटा और उसी इवेंट के जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है वन ऑफ माय ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर सोहेल काशिफ यहां पर मौजूद सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम या अली मदर
0: यस सर गुड टू सी यू अगेन सोहेल भाई अपना सोहेल भाई कैसे हैं भैया आप
1: क्या हो रहा है आज हम मेरा ख्याल दोनों दौड़ लगा के आए हैं ताकि इसीलिए हमारे मुंह सूखे में
0: हाँ बात यही हो रहा है और आजकल थोड़ा वेदर यू नो आज का वेदर भी थोड़ा अच्छा था बारिश का था इट वॉजन्ट वेरी हॉट वॉजन्ट वेरी कोल्ड लेकिन पिछले अगले दो तीन दिन में बड़ी ठंडी आ रही है 10-11 हाई है बारिश भी हो रही है सो थिंग्स विल चेंज
1: Yeah, it is about to change.
0: Yeah.
1: It is already. We are in the middle of September.
0: Middle of September. Yes, yes. So you know, just to give you a bit. आज मैंने post किया था कि जो 90s का जो show नहीं जा रहा है वहाँ पर जो दो singer होंगे एक तो है Moon Ahmed जो कि पहले Calgary में रहती थी लेकिन 10 साल पहले वो जो है अपना USM में move हो गई है उनकी एक video का message आया so I'll play that video first and then we'll talk about the show कि वो जो October 3rd को क्या होने वाला है और आज के शो में क्या होने वाला है विल टॉक लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट द इवेंट प्लस एआई जो आजकल दुनिया में उसने हलचल मचाई हुई और हमारे भाई सोहेल ने काफी काम करे एआई के साथ उनसे हम पूछेंगे एआई में क्या क्या हो सकता है क्या क्या चीज उसके लिए जो हमारे लिए अपना मुस्बत है क्या क्या नेगेटिव है और हमें किस तरह उसको यूज करना चाहिए आई थिंक विल टेक जो है लॉट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम वन एंड ओनली एक्सपर्ट आवर टेक एक्सपर्ट सोहेल काशिफ
1: थैंक यू वेरी मच
0: हमारे फोटोग्राफर तो आप एक्सपर्ट है अरे आपका तो एक और मिल गया आपको लकब यानी टैक्स जो एक्सपर्ट का भी मिल गया लकब आपको
1: आपकी मेहरबानी है आप जिस एंगल से भी देखें ना बड़ी मेहरबानी है हाँ मैं क्योंकि ये एआई का आजकल जो है वो मल्टीमीडिया से बहुत ज्यादा जो है वो उस पे अफेक्ट कर रही है तो
0: आजकल जो मैंने न्यू साइंस देखी है जो बाहर जो ली लग्जरी साइंस लगी होती है रोड अपना स्ट्रीट्स पे
1: जी
0: वहां पर यू कैन टेल कि ये साइन जो है एआई से बनी हुई है
1: सर हर जगह यूज होनी चाहिए आप अपना सोशल मीडिया देख ले आजकल कौन है आजकल कौन है जो जिसकी पोस्ट जो है वो एआई के बगैर आ रही हो तो
0: बिल्कुल
1: इट्स एवरीवेयर नाउ
0: एवरीवेयर चलो ये जो अपना मैसेज आया है मून की तरफ से
1: जी
0: तो देन वी स्टार्ट के जो है अपना आपको वीटो को शोज और कितने टिकट रह गई है वैसे टिकट आर डूइंग रियली वेल 60% सोल्ड आउट ऑलरेडी तो अभी बहुत ही कम रह गई है तो आपने जो भी अगर आपने टिकट लेनी है जो 90s के जो हम सब के फेवरेट गाने हैं वही हम जो है गाने इस बार जो है प्ले करेंगे सुहेल भाई थोड़ा मैं नजर करता हूँ अच्छा नाउ वी गोना गो लाइव ऑन फेसबुक एज वेल तो आप जो है मुझे सुहेल भाई को आप जो है देख भी सकते हैं लेकिन सबसे पहले लेट मी प्ले द वीडियो मैसेज बाय वन एंड ओनली मून अहमद और नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल एंड लेट मी प्ले दिस वीडियो फ्रॉम हेयर

0: This is Moon Morning. I'm coming to Calgary after a long, long time. On October 3rd with KWJ Entertainment at the Michi Restaurant at 6:30 p.m. We'll be presenting a Bollywood night with all the 90s songs. And I'm hoping to see everyone from Calgary to come and watch the show. And we are hoping to have a blast together. Thank you. See you.
1: One and only Moon है वो आपको याद है Moon?
2: हाँ नहीं मुझे नहीं याद मैं मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इनको पहले सुना हुआ है अभी लेकिन इस दफा देखेंगे मैं आवाज से तो मैंने पहले समझा कि शायद आपने ओरिजिनल ट्रैक लगा दिया
1: Oh my God that's very compliment for Moon
2: या तो
1: नो तो लीजिए तो जो अभी मैंने कहा कि जो अक्टूबर थर्ड को होने जा रहा है सैटरडे को मिर्ची रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट में मून एम

0: What an amazing song. Yes, Pehla Nasha by Udit Narayan and Sadhana Sangam Ji. So yes, so again, October 3rd, ko kuch kuch hota hai ke naam se jo Bollywood ke hits of 90s ko show hone ja raha hai, October 3rd ko at Mirchi Restaurant. Moon Ahmed and Sagar Acharya will be the artist. I will be the MC. Or it's with the full dinner. Or dinner mein jo apna menu hai. वह है पापड़ी चाट चिकन कढ़ाई दाल नान राइस खीर या तो फिर गुलाब जामुन होंगे चाय पॉप वाटर विद इनक्लूडिंग डिनर एवरीथिंग है सोहेल भाई आपके मुंह में पानी आ रहा है
1: बिल्कुल दैट लुक्स फैंटास्टिक स्मेल आ रही है पानी तो नहीं आ रहा स्मेल अभी से आ रही है
0: यस यस आई थिंक इट विल बी नाइस टिकट्स जो है इट्स ओनली $40 and $50 इंक्लूडिंग डिनर यू कैन टेक्स्ट मी एट 5878994786 अच्छा सोहेल भाई 90s के गानों में ऐसा क्या था आप बॉलीवुड ले लें हॉलीवुड ले लें लॉलीवुड ले लें पाकिस्तान के गाने जब भी 90s में आते थे नदीम शबनम के गाने इतने मशहूर होते थे ऐसा क्या बात है जो जो 90s के बहुत गाने मशहूर हर तरफ पूरी दुनिया में
1: देखिए जी उस जमाने में जो हमारी मूवीज और ये गाने वगैरह होते थे वो शायर जो है वो टाइम देते थे और उस वक्त इतना वो नहीं था उसमें इतना पैसा नहीं था वो लोग अपने आर्ट के लिए काम करते थे
0: ठीक है
1: इसीलिए अच्छे गाने लिखे जाते थे और एक एक गाने की बैठ के जो है कई कई महीनों तक रिहर्सल होती थी उसकी तर्ज बनती थी ट्यून बनती थी उसके बाद जाके उसकी रिकॉर्डिंग होती थी और वो गाना यकीनन दिल को छू लेता था अब सब जो गाने हैं वो आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स पे बनते हैं उसमें ह्यूमन एफर्ट्स तो नहीं है इसी वजह से वो जो है

0: है इतने वो जो है दिल को लगते भी नहीं है, पॉपुलर भी नहीं होते, उनमें वो फीलिंग ही नहीं है, टच ही नहीं है.
1: यस सही बात, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. यस यस यस. इसलिए हमने और देखिए वो 90s में कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गुजरे हैं, यू नो लाइक इफ आई जस्ट टेक अ बॉलीवुड, जिसमें ऑफकोर्स लता जी, फिर आशा जी, फिर हमारी किशोर कुमार, रफी, प्लस जो नए नए जो बाद में आए, कुमार सानू है, उदित नारायण है, साधना सरगम है, यू नो.
0: बिल्कुल, उनका बचपन से जी उनका उठना बैठना जो है बड़े उस्तादों के साथ था, उनका रियाज था सुबह शाम का. उन्होंने कई सालों के बाद वो मुकाम पाया है जो आजकल का सिंगर जो है वो YouTube पे एक गाना सुन के जो है yes. सिंगर बन जाता है. तो उसमें फर्क तो होगा, यकीनन होगा. और ये गाने सिर्फ इसी सेंचुरी में नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा.
1: यस yes, बिल्कुल बिल्कुल या. और इसको जो प्रेजेंट क्या है, KWG एंटरटेनमेंट. आप पूछेंगे नहीं कि ये अपना KWG एंटरटेनमेंट है क्या,
0: ये कौन है ये KWG
1: एंटरटेनमेंट कौन है, मैं वो आपको बताऊंगा टाइटल सॉन्ग के बाद, जो कि आज का फेवरेट गाना है माइन इज योर्स. कुछ कुछ होता है का जो नाम के, उसी के नाम जो है टाइटल सॉन्ग. लेट्स एंजॉय टुगेदर फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है.
0: कुछ कुछ

कुछ कुछ होता है जी हां टाइटल सॉन्ग और ये टाइटल उस जो अक्टूबर 3rd को जो शो होने जा रहा है मिर्ची रेस्टोरेंट में जो है टिकट्स आर $40 एंड जो है $50 सिंगर्स आर मून मून अहमद एंड सागर आचार्य एंड हमारे ऑफिशियल जो ऑफिशियल फोटोग्राफर विल बी सुहेल काशिफ जो कि मेरे साथ यहां पर मौजूद है और हमारा टाइटल स्पॉन्सर कंट्री टोयोटा एंड साउथ पॉइंट टोयोटा

What a beautiful track from Dil Hai Ke Manta Nahi. आपको ऐसे बहुत से गाने मिलेंगे सुनने के लिए on October the 3rd जब भी जो है जो जो है कुछ कुछ होता है के नाम से एक जो है बॉलीवुड का शो होने जा रहा है कॉन्सर्ट जो के एट मिर्ची रेस्टोरेंट और ऐसे 90s के सारे जो हिट्स हैं वो चलेंगे इंक्लूडिंग दिस वन कुछ कुछ होता है दिल है के मानता नहीं आपको DDLJ एवरीथिंग और आप सबको बहुत मजा आएगा ऑफ कोर्स वी आर लाइव ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल जो हमारे सिंगर्स हैं मून अहमद एंड सागर आचार्य विल बी द आर्टिस्ट फॉर द अक्टूबर 3rd तो और जो है टिकट्स आर ओनली $40 and $50 इंक्लूडिंग डिनर $40 जस्ट फॉर द जनरल एडमिशन एंड अगर आपने अगर आपको रिजर्व करनी सीट स्लैश VIP तो फिर वो जो $50 की होगी इंक्लूडिंग डिनर जो आज का जो शो है इसको स्पॉन्सर किया है ऑप्टिमा आईवेयर एंड ऑप्टिमेट्री इनकी दो लोकेशन हैं कैलगरी एंड एड्री जिसको शेजाद मियां साहब इसको ऑन करते हैं इनका फोन नंबर 403-463-6666 A2Z वैक्यूम आवर गुड फ्रेंड जी हनीफ माओ जी ही विल बी देयर आई नो A2Z वैक्यूम जो कि बहुत सालों से एक ही लोकेशन पर 52nd and 16th Avenue अगर आपने कोई भी वैक्यूम फॉर योर ऑफिस और फॉर द रेजिडेंशियल अगर आपने सर्विस करानी है नया लेना है तो आपको यू कैन कॉन्टेक्ट आवर गुड फ्रेंड हनीफ माओजी इनका फोन नंबर है 4032074882 अगर आप

0: are available, you can contact Sanjeev at 403-590-5503. Agar aapne TD Bank se, agar aap, if you're looking for mortgage, you can call Alicia Benning. She is a mobile mortgage specialist. Inka phone number 403-681-9687. Mere show ke sare jo tickets print karna, design karna, poster design karna, one and only guy Shafin Jivani from the Casket Printing. Yeah, if you want to get anything done, you can call Shafin Jivani at Casket Printing 403-250-2202. Yes, we are getting ready for the October 3rd. So, are you ready? इसको प्रेजेंट किया है
1: अच्छा, ब्रेक से पहले आप वो कुछ KWJ के बारे में बताना चाहते
0: हैं या KWJ ऑफ कोर्स हमारा टाइटल स्पॉन्सर है कंट्रीज टोयोटा एंड जो है साउथ पॉइंट टोयोटा दे आर द जो है टाइटल स्पॉन्सर लेकिन इसको शो को ऑर्गेनाइज किया KWJ व्हाट इज द KWJ इट्स ऑफ कोर्स जो है कॉफी विद जलाल KWJ आपको याद होगा लाइक जो कॉफी जलाल आई थिंक तकरीबन 15 साल से ये चल रहा है ड्यूरिंग पेंडेमिक जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी बट आई स्टार्टेड ऑनलाइन ऑनलाइन पे शो चल रहा था और वहां पर दुनिया भर के आर्टिस्ट सोहेल भाई ज्वाइन किए थे इंक्लूडिंग सलीम सुलेमान ने भी मुझे ज्वाइन किया था फॉर जो कपल ऑफ शोज एक तो उनका जन्मदिन था और एक जब वो यहाँ पे जो कैलगरी आ रहे थे फॉर इवेंट तो उन्होंने ज्वाइन किया था तो आई थिंक अल्लाह ने बहुत इज्जत दी बहुत दिल से लोगों ने दुआएं भी दी और वो बस बढ़ता चला गया और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई ओ टू द कम्युनिटी Oh, to the artists, jinhone jo hai coffee jalal ko itna famous kar diya during pandemic. So I'm just trying ki now the KWJ coffee jalal ke naam se ek tarah, you know, I'm just trying to jo hai come up with one of the umbrella jiske under mein sara kuch ho. To usme entertainment bhi hoga, usme agar aapne jo usme jo hai radio shows bhi chalenge. उसमें फिर इंशाल्लाह चैरिटी के शोज भी होंगे फिर उसमें आपको इसमें आर्ट जो आर्टिस्ट के लिए इज गोना बी स्पेशल समथिंग सो इंशाल्लाह जो है वर्किंग ऑन इन समथिंग वो भी शुरू होगा सो इट्स ऑल अबाउट आर्ट इट्स ऑल अबाउट प्रोमोटर्स ऑर्गेनाइजर्स वॉलंटियर्स फोटोग्राफर आप जैसे भाई है जो इतनी मेहनत करते हैं कि शो के पीछे आप सबको वहां पे जो है इंशाल्लाह जो है क्रेडिट मिलेगा आपको जो कहते ना कि वो आपको क्या कहते हैं सराहा जाएगा आपको इंशाल्लाह
1: सो दैट्स द प्लान यकीनन इस चीज को हमेशा एडमिट करता हूं कि आपने हमेशा ही जो है आर्ट की बहुत कदर की है और मेरे जैसे एक आम से इंसान को भी
0: बस अल्लाह आप जैसा इंसान जो है आम यानी अल्लाह मुझे भी आप जैसा जो आम इंसान बनाए
1: आई एम डाउन टू अर्थ आपको पता ही
0: नहीं नहीं वो तो इससे तो आप मेरे साथ हो इससे तो आप मेरे साथ हो
1: नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आई एम सीरियस कि बहुत मेहरबानी आपकी आप जो है एक छोटे से काम को मेरे इतने छोटी सी एक चीज को आप इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं बहुत शुक्रिया आपका
0: और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ काम भी करो और मुझे बर्दाश्त करते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है
1: देखिए इसी वजह से आपने मैं आज इतना थका हुआ था और लेकिन आपने मुझे कहा मैं फिर भी आ गया और ऑनेस्टली अब मुझे लगता है कि
0: जी
1: मैं किसी को घर से बुलाऊं कि आके मुझे ले जाए
0: One and only Sohail Kashif, yes, he's our official photographer for October 3rd.
1: And honestly, viewers, I am so tired today. That's why maybe, you know, my battery is down.
0: Yeah, nahin, I think you're okay.
1: Lekin kuch hota hai ke gaane sun ke ab mujhe thoda sa
0: आपको थोड़ा
1: आपको रिफ्रेश
0: हो रहा है जी जी बिल्कुल
1: तो नेक्स्ट गाना कौन सा सुना रहे
0: नेक्स्ट गाना विल टेक जो स्मॉल कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है विल बी राइट बैक एंड वी स्टार्ट विद आवर लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग KWJ कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद
2: वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारिआं लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा भी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने ता फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते ਭਰੋਸਾ

0: साथ ही टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है ते ओता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उन्हां नूं फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
1: हेलो गोपी शुक्र है तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा कर लिया सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए
2: ओ सारे डरदे नहीं चकदे उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भरे समान नूं हाथ पावे
1: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ
3: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग
4: जी हां वेलकम बैक टू कॉफी जलाल और रेडियो सुसंगम 94.7 FM मेरे साथ हैं मेरे दोस्त सुहेल काशी यहां पर मौजूद है जो कि अपना हम अपना ऑफिशियल फोटोग्राफर फॉर तो अक्टूबर 3rd इवेंट जो कि जिसका नाम है कुछ कुछ होता है जिसको प्रेजेंट किया है KWJ कॉफी जलाल एंटरटेनमेंट प्लस जो है टाइटल स्पॉन्सर कंट्रीज टोयोटा एंड साउथ पॉइंट टोयोटा सुहेल भाई आप जो AI में आपने जो है अपना धूम मचाई हुई है
5: नहीं सर धूम तो नहीं है बस अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ
4: तो आप जो वीडियो ज्यादा बनाते हो
5: वीडियो भी है और ग्राफिक्स भी है मैं कुछ आजकल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जो कि हमारी कम्युनिटी से तो वो रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ क्लाइंट्स ने मुझे दिए हैं काम करने के लिए तो मैं इस चीज की फेवर में तो नहीं हूं लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज आ गई है और इवन कि अब तो क्लाइंट्स भी डिमांड करने लगे हैं कि अगर किसी को कहें कि मैं ये काम 3 दिन में करूंगा वो कहते हैं आप AI के थ्रू क्यों नहीं करते हैं आप मुझे कल तक क्यों नहीं रिजल्ट दे सकते तो फिर आपको मजबूरन है आप मजबूरी है आपकी आपको फिर उसमें रिसर्च करनी पड़ती है सीखना पड़ता है AI भी ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ एक दो चीजें लिख देंगे उसके पीछे आप रिसर्च करें पहले अपना पूरा फ्रेमवर्क बनाएं तो फिर जाके जो है आप उससे अच्छी गुड क्वालिटी जो है वो ले सकते हैं
4: तो आजकल जो जो AI की जो एप्स अवेलेबल है जो अपना फ्री वर्जन इज इट वर्थ इट और नो
5: नहीं फ्री वर्जन को जो है उनके लिए एक स्लोप का लफज इस्तेमाल किया जाता है वो ना तो वो YouTube पे मोनेटाइज होगा और ना ही मेरा नहीं ख्याल कि वो आप बेकार आप अगर देखें तो आपको ज्यादातर आजकल फ्री वर्जन की ही चीजें मिल रही हैं
4: राइट
5: लोग मुझे नहीं पता कि लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते पैसे नहीं लगाना चाहते आप अगर आप एक दफा उसे करके देखें पेड वर्जन के थ्रू और उसे प्रोफेशनली करें तो इट इज सेम एज यू नो फोटोशॉप और कैनवा
4: अच्छा
5: जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक्स के इवन के फिल्म मेकिंग के लिए भी अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया
4: जी जी
5: आप अभी रिसेंटली मैंने कुछ पाकिस्तानी प्लेस में पाकिस्तानी प्लेस में मैंने AI और किसी को पता नहीं चला लेकिन मैंने उसी वक्त पिक्चर पॉज कर ली मैंने फैमिली को कहा ये AI पे बना है आई ग्रांटेड के ये AI पे बना है
4: तो यू सुनो यू नो आई थिंक 90% लोग जो है आई थिंक AI की जो ऐप यूज कर देंगे ऑन अ सेल फोन के लैपटॉप पे जाना जरूरी है
5: देखें जी सेल फोन पे तो मैंने आज तक कोई काम नहीं किया
4: oh God,
5: so okay. स्क्रॉलिंग के या आपको मैसेज करने के
4: ठीक है
5: मैं नहीं सेल फोन के ऊपर मैं प्रोफेशनल वर्क के लिए तो सेल फोन नहीं है
4: नहीं
5: मैंने कभी एडिटिंग नहीं की कभी कोई ग्राफिक डिजाइन नहीं की I mean, मुझे करना ही नहीं आता मैं मुझे आदत है मेरे सामने जो है ना 27 इंच के 2 मॉनिटर हैं तो मैं जो है ना कंफर्टेबल फील करता हूँ अदरवाइज तो
4: ठीक है
5: आपको एक वर्क स्पेस भी तो चाहिए ना
4: राइट ऑफ कोर्स तो यू नो अभी जो आपने पेड वर्जन लिया हुआ है आई एम श्योर के वो आप जो अपना वीडियो बनाने में बड़ा हेल्पफुल होगा
5: जी वो इस तरह है कि मैं उसे कंटिन्यू नहीं करता मैं 1 मंथ के लिए लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट किया
4: अच्छा
5: उसके बाद कंप्लीट किया उसके बाद मैं उससे जो है ना और वैसे भी इतनी चेंजेस आ रही हैं कभी 1 महीने एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है दूसरे महीने दूसरा होता है
4: राइट

0: मैं उसे जब भी मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा मैं उसके लिए पे करता हूँ और फिर उसके अंदर जो है दो तीन हफ्तों में काम करके उसे वाइंड अप करके उसे डिलीवर करने के बाद उसे मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ क्योंकि कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है आपको. आप खाम खाम में अगर आपके पास करने को
1: कुछ नहीं हो तो
0: आप क्यों जो है हर महीने $200-$300 जो है ना आप वेस्ट कर रहे हैं.
1: राइट. तो यू नो अभी जैसे ये अभी जैसे AI आई थिंक तकरीबन एक साल हुआ कि जस्ट केम फ्रॉम एवरीवेयर. 6-8 महीने एक साल हो गया आए हुए.
0: यकीनन जी मैं तो मुझे तो अब लगता है ये हमेशा से यही थी.
1: एग्जैक्टली. तो अभी क्या तो फिर इतना अचानक क्या हो गया कि
0: अचानक आप यकीन करें कि मेरी एवरीडे मॉर्निंग मैं सुबह नई न्यूज के साथ उठता हूँ और रोजाना इम्प्रूवमेंट होती है डेली बेसिस पे.
1: वाओ.
0: इवन के आपके चैट के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी एक वीक में एक प्रोग्राम आगे होता है दूसरे वीक में दूसरा प्रोग्राम आगे होता है और आई डोंट नो वेयर दिस इज गोना एंड.
1: तो यू नो आजकल आपने सुना होगा जैसे अल्बर्टा में स्पेशली जो अपना AI की जो सेंटर जो खुलने की बात हो रही है और जो उसको अपने अप्रूवल नहीं मिल रही है कि उसको इतना पानी चाहिए उसको इतना इतना जो है ठंडा रहना चाहिए उसको इतना जो अपना बहुत महंगा होगा. लाइक ऑफकोर्स यू नो दे आर अभी तो भी जैसे फेसबुक
0: उसकी कूलिंग के लिए और वैसे मुझे नहीं मालूम कि ये
1: तो इसका क्या
0: इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है. यूट्यूब का जो उनके जो डेटा सेंटर्स हैं आप कभी देखे वहां पे भी यही कुछ है. आप दिन रात यूट्यूब यूज कर रहे हैं हर जगह पे उसकी कूलिंग का भी यही सिस्टम है.
1: तो फिर ये क्यों इतना वो अगेंस्ट में हो रहा है सब.
0: इसमें ज्यादातर वही उसके अगेंस्ट है जो नहीं चाहते कि AI जो है वो फ्लरिश हो उसको रोकना चाहते हैं. ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसके खिलाफ काफी बातें करते हैं.
1: यू नो आई थिंक अभी जो आई थिंक यहाँ पे अल्बर्टा में तकरीबन 3-4 सेंटर डेटा सेंटर खुलने की बात थी. दे आर विलिंग टू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर लाइक लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर. लेकिन जो है अपना जो टाउन हॉल मीटिंग हुई विद द प्रोविंस लोगों ने मना कर दिया. दे वर नॉट इन फेवर. बोले ओके नाउ सो इट जो है फिलहाल एज ऑफ राइट नाउ देयर इज नथिंग इज ओपनिंग. लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डोंट बी अ फूल. इसको जाने मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है आने दो एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन. मना नहीं कर दो अचानक ओके हमें नहीं खोलना है. I'm sure there is a way to do it.
0: अल्बर्टा में ना बनने से रुकेगा तो नहीं.
1: एग्जैक्टली. यानी AI जो है रुकने नहीं वाला.
0: हम जितनी भी वर्ल्ड में आज तक चेंजेस आई हैं हम में से बहुत सारे ग्रुप्स ने बहुत सारी कंट्रीज ने उसके अगेंस्ट बोला है. लेकिन आप यकीन करें मैं अभी तक सेलफोन को 5-6 घंटे इस्तेमाल करता हूँ और सबसे ज्यादा अगेंस्ट घर में सेलफोन के मैं होता हूँ. तो मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जिस चीज के खिलाफ बात करते हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं.
1: और वो ये कहीं जा भी और कहीं जा
0: कहीं नहीं जा रहा. कहीं नहीं जा रहा.
1: या अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप खुद ही पीछे हो जाएंगे.
0: या बिल्कुल.
1: आई थिंक जो है आपने यही तो ये कहीं जा नहीं रहा. यू नो आई एम श्योर के आई होप के जो है गवर्नमेंट ऑफ अपना अल्बर्टा या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा इसका सोल्यूशन देखें ताकि जो इन्वेस्टमेंट अपना जैसे फेसबुक है या तो कोई और जो अपना लोग करना उनको करना है इन्वेस्टमेंट अल्बर्टा में. Let them do it, I think, but find a way.
0: Yeah.
1: के find किस तरह उसका जो कूलिंग का सिस्टम हो कुछ भी हो अगर दे आर विलिंग टू स्पेंड जो है अपना $15 billion आई एम श्योर दे कैन स्पेंड 1 more billion फॉर द कूलिंग सिस्टम एज वेल. यू नो आई मीन I'm sure there
0: but
1: is a way
0: to do it. This is not going to create many, many jobs in Alberta because this is a AI data center. कुछ तो होंगी जॉब्स. आई एम नॉट सेइंग दैट
1: हाई पेड जॉब
0: लाइक हाई पेड होंगी लेकिन इट्स नॉट गोना मेक बिग डिफरेंस इन द जॉब मार्केट बिकॉज जॉब्स आर एक्चुअली एट लीस्ट राइट नाउ.
1: तो यू नो वो आके बनाएंगे कंसेशन हो उसमें तो जॉब निकलेंगे ना.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो उसका जो है अपना इकोनॉमी जो फिर जो पैसा इज गोना गो अराउंड अल्बर्टा राइट जो भी हो. तो एनीवेज October 3rd को एक बार फिर से October 3rd को मिर्ची रेस्टोरेंट में कुछ कुछ होता है के नाम से एक जो अपना बॉलीवुड का जो 90s के जो हिट्स है उनका एक जो इवेंट होने जा रहा है कॉन्सर्ट जिसमें मून अहमद आ रही है US से टेक्सस से आ रही है और फिर सागर आचार्य विल बी इन कैलगरी एंड द टिकट्स आर $40 and $50 ओनली. और इसको जो प्रेजेंट किया है KWG एंटरटेनमेंट जो कि अपना कॉफी भी जलाल है प्लस हमारा टाइटल स्पॉन्सर कंट्री सोएडा एंड साउथ पॉइंट टू एरा और हमारा ऑफिशियल फोटोग्राफर वन एंड ओनली سوہیل کاشف بھائی اور جو میڈیا پارٹنر جو ہیں سلام نماز کیلگری اینڈ ریڈیو سو سنگم 94.7 FM اور دیر آر مور ڈیٹیلز آر کمنگ جو اپنا انشاءاللہ پوسٹر اور بھی آ رہے

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पिछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757
3: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स
5: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ
6: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ

ने ये नहीं सी आख्या हम भारत के ऊंची जात के लोग और नीची जात के लोग, उन्होंने सारिया जाता नो बराबर रखा सी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह नहीं सी आख्या हम भारत के काले और गोरे लोग सारे बराबर रखे सी। जिहड़े डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सारिया नो बराबर रखा सी उहदे अपने नाल जिंदगी च बहुत बेइंसाफियां होईयां, जो कुछ उदो पढ़ाई वेले स्कूल विच जाके सहना पिया और उहदे खिलाफ उहने ओना ज्यादा सिरड़ नाल पढ़ाई कीती ते अगे आउण वास्ते जोर लाया और कित्थों तक दुनिया भर की पढ़ाई करके आके ते हिंदुस्तान नूं योगदान दिता। उन्होंने चोणां लड़ियां, तीन चोणां लगातार जित गए, पर जिहड़ी चौथी चोण सी जिहदे विच बहुत कुछ भारत दा दांत लगा सी, संविधान तैयार करन वाली असैम्बली बननी सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली, उहदी चोण होई ते उह मुंबई चो हार गए। अजकल तां किसे थां दे उत्ते फरवरी च वोटां पैंदियां, किसे च मार्च विच, ते रिजल्ट जाके सारिआं दा इकट्ठा आउंदा इक्को दिन। उदों इह नहीं सी हुंदा, उदों इह है कि जिन्ने क हल्कियां दीआं चोणां हो गईआं नाल दी नाल रिजल्ट आ जांदे सी। डॉक्टर अंबेडकर जदों उत्थों मुंबई तों हार गए ते मुड़के उन्होंने शड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन बनाई सी, उहदे वल्लों इह वेख्या कि बंगाल दीआं चोणां अजे होण वालीआं, उह बंगाल च जाके बाकी इंडिया हल्कियां चों इक च खलो गए। उत्थे कांग्रेस ने मदद कर दित्ती, जित गए, पर माड़ी किस्मत फिर कि देश की वंड हो गई, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान दो हिस्सों सी, एक ईस्ट पाकिस्तान जिते हुण बंगलादेश आ, एक वैस्ट पाकिस्तान जिते हुण पाकिस्तान है असल च। उह जदों उत्थों जित गए ते भारत की वंड हो गई, पाकिस्तान बनिया, ते बंगाल का जिहड़ा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान विच आ गया, बंगलादेश अजकल बनिया, डॉक्टर अंबेडकर की सीट उधर चली गई। जो सीट ही उधर चली गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली के मैंबर भी ना रहे। फिर पंडित जवाहर लाल नहरू ते सरदार वल्लभ भाई पटेल दोवे इकट्ठे होकर महात्मा गांधी कोल गए कि इहदे तों डॉक्टर अंबेडकर तों बिना साडे कोलों संविधान नहीं बनाया जाणा, इहनूं किसे ना किसे तरीके असीं कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली जिहड़ी संविधान बनाउण वाली आ उहदा मैंबर जरूर बनाईए। फिर उन्हां ने एस एस जयकर हुंदा सी उन्हां दा इक पार्लीमेंट मैंबर, उहदे तों अस्तीफा दवाया कांग्रेस ने, उहदे वाली सीट ते दोबारा चोण कराई। उह चोण तों डॉक्टर अंबेडकर जिते, कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे मैंबर बणे, ते मैंबर बणन तों बाद इहनां नूं उस असैम्बली दी कमेटी दा चेयरमैन बनाया गया जिन्हें संविधान बनाया। हुण जिहड़े डॉक्टर अंबेडकर ने सारी जिंदगी इन्ना संघर्ष कीता होवे, जिहड़े डॉक्टर अंबेडकर ने सारी जिंदगी ला के भारत नूं इहो जिहा संविधान दिता होवे, उहदे बारे कुछ लोग किस तरह दीआं बातां कीतीआं करन, ते कोई चंगी गल नहीं, कि होना नहीं चाहीदा, पर साडा भारत इन्हां गल्लां च बहुत महान है कि इत्थे हर किस्म दी बदतमीजी नूं वी लोकी अपने डेमोक्रेटिक राइट मान लैंदे आ। हुण अजे कल ही असीं गल करदे सां कि कांग्रेस पार्टी दा आल इंडिया प्रेजिडेंट ते पार्लीमेंट दा मैंबर मालिक अर्जुन खड़गे किसी धार्मिक स्थान ते चला गया श्रद्धा पूरी करने वास्ते, ओहदे आउण तों बाद उस धार्मिक स्थान नूं जल नाल धोता गया, आख्या जी शुद्धिकरण कीता, क्योंकि मालिक अर्जुन खड़गे शड्यूल्ड कास्ट जाति तों सी। इह मामला कई दिन रौला पैंदा रहा, भारतीय जनता पार्टी दोषियां नूं बचाउण लगी रही, अखीर सारे पासिआं तों दबाव पिया ते परसों उह जिहड़े श्री राम सेना वाले आ उहनां दे खिलाफ एक परचा दर्ज हो गया। जे सारे पासिआं तों पब्लिक दा दबाव ना वधदा हुंदा ते इहनां ने इह परचा तां नहीं सी दर्ज करना, अजे तक कोई गल लटकाई जा सकदी सी। हुण इह जिहड़ा सारा कुछ हो रिहा सी इहदे च असीं वेखीए कि इक किस्म दा इहदे च झलक मिलदी आ कि भारत विच अजे तक वी छूतछात किन्नी आ। इह झलक मिलदी आ कि अज वी शड्यूल्ड कास्ट दे बारे मनां विच विहार किदां दा, डॉक्टर अंबेडकर के सवाल से जो कुछ किया गया, उन्होंने बुत की जी बेहुरमती की गई है, उदे तो बाद कल लुधियाने जाम सी, अज अमृतसर गुरदासपुर कई होर थावां ते जाम लगता पाया, पता नहीं सारा पंजाब जाम हो जाए। मैं समझा कि इहदे नाल पंजाब का माहौल खराब किया जा रहा, अगले दिनों च इत्थे विधानसभा दीआं चोणां होण वालीआं। साडा पिछला तजर्बा भी है कि जदों चोणां नेड़े आउंदीआं उदो कुछ ना कुछ लोग इहो जी बदतमीजी ज्यादा करदे हुंदे आ तां कि लोकां नूं आपो च वंड के लड़ा के पाड़ के ते वोटां दा इक हिस्सा लिया जा सके। इस वेले भी डॉक्टर

0: ya ki o yaptı kita yaptı yaman kara da ki kita o yaptı kita ne oldu ki ne oldu ya तू जब इतो गया तू ड्राइविंग लाइसेंस बनाया कर था तो सी ओदी तरीक किसी दा को नंबर किसी नाल नंबर दस गया ना तरीक ना ए दस गया कि लाइसेंस बनाया कड़े शहर तो सी कड़े डिस्ट्रिक्ट में जा सेट तो सी इने मतलब कि हर मामले विच ही ये जरा आदमी झूठ बोलता सब तो वड्डी गल उन्होंने ये आखी कि हर देश दे विच वैलिड लाइसेंस जरा उतो दा ड्राइविंग लाइसेंस जरा बाहर तक जाके इस तरह उस नहीं वरत्या जा सकता तो जे किसी ने वरत्या जा वरतन की कोशिश की है तो गलत है तो जिन्हें उन्होंने गड्डी दी सी कि चल तू वरत ला उन्होंने इस गल का ख्याल रखना चाहिए सी क्योंकि गड्डी होती है इस करके किसी भी किस्म का कोई नुकसान होया कोई हर्जा मर्जा होया तो जिम्मेवारी ओदी बननी है इस करके उन्होंने गड्डी देनी नहीं चाहिए जो देती है तो ये उन्होंने वेखना चाहिए सी कि भावे टैंपरेरी सही ओदे कोल लाइसेंस हैगा इंडिया का ते जे हैगा ही नहीं ते इहदी जिम्मेवारी गड्डी वाड़े ते भी आउंदी आ ते जिहड़ा एनआरआई है जिन्हें गड्डी वरती ओहदे ते भी बराबर दी आउंदी है
1: जी। अपन सब SIR दी गल करदे आ जाण तों पहलां एक वारी फिर मुद्दा बन गया राघव चड्ढा करके ते एक कोई होर है ये हुण कहदा रौला पै गया जी
0: इहदे च दो गल्लां दा रौला हुण नवें सिरों पिया एक गल तो यह है कि राघव चड्ढा की पहला कहते वोट है नहीं उन्हें आख्या मेरा मोहाली एड्रेस है मेरी वोट कि कटी थी इन्होंने आख्या तू उ रिंदा ही नहीं उस घर वाले ने आख्या राघव कि रिंदा ही नहीं इन्हें आख्या रिंदा क्यों नहीं मैं उत्थे रिंदा पत्रकारों ने जाके उस घर की वीडियो बना के जारी कर दिती क्या अंदर में कुछ जो पलंग ने जो बैड पे ने इन्हों की हालत दसती है कि पता नहीं साल तो बंद हो गया कदे कोई सुता ही नहीं होना दूसरा इस घर कोई सफाई नहीं इस घर को खाने का समान नहीं इतने कोई बाकी लोड़ी चीजा नहीं इतने कोई गड्डी नहीं खड़ी ये खाली घर है कौन रिंदा हो सकता इसका जवाब राघव चड्ढे कोई नहीं ओदा को राइट सी अपनी वोट ढूंढनी बनवा सकता सी कह के जो मेरी मोहाली च पिछली वोट सी कट्टी गई तो हूं मेरी दिल्ली च बना दो पार्लीमेंट मैंबर की वोट ढूंढ के हो सकता सी शॉर्टकट मारता रहा मोहाली के सिर ते बयान दिता कि मैं मोहाली का रहने वाला उस ढक रहा बयान देने तो पहला की तरीक पाके अगे कि देती फिर बैकगेट में एक तो रौला ओदा पै गया दूसरा कुछ गल्ला एहोजिया जिहड़िया बिलकुल मूर्खा वाली हो रही थे उथे जाके एक प्रोफेसर साहब ने वोट कटे गया प्रोफेसर बजुर्ग ने उस उम्र बंदे का वैसे भी सत्कार किया जाना चाहिए जो कोई 85 तो उपर टपया गया तो उन्होंने किन्ना तंग करना जेडे प्रोफेसर साहब आ वो भारत के बड़े उगे साइंटिस्ट आ प्रोफेसर CNR उन्हों का अगला नाम मैं इस वे भुल गया उन्हें प्रोफेसर CNR ने उन्हें मामले च यह गल सामने आ गई कि उन्होंने वोट इस करके कट्टी गई है कि उन्होंने CNR राव उन्होंने वोट इस करके कट्टी गई कि पहली बार जो वोट बनी तो उन्होंने नाल प्रोफेसर लिखन लग्या PROF लिखा सी इस बारी गलती किसी ने PROFF लिख दिता इन्हीं गल वोट कट्टी गई हूं होंदा की है वो आधार कार्ड या पासपोर्ट लैके वेख्या जा सकता जो PROF है कि PROFF है ओदा भी हर किसी नूं पता कि PROF हुंदा जे डबल पै गया तो गलती नाल और तुहानूं मैं जिहड़ी गल इह दसा कि भारत का जिहड़ा सब तो वड्डा सन्मान है वह भारत रत्न हुंदा बड़े गिणवे चुनवे लोगों नूं मिलिया डॉक्टर BR अंबेडकर नूं मिलिया इदां दे हस्तियां नूं मिलदा एवं नहीं किसी ने मिल जाता डॉक्टर CN प्रोफेसर CNR राव आ वो एडे वे साइंटिस्ट आ उन्होंने कीतिया खोजा सारी दुनिया ने मनिया ने उन्होंने भारत रत्न का खिताब मिलिया जिसे बंदे भारत रत्न का खिताब मिलिया ओदी वोट दिते इंडिया से रौला पा लिया कि प्रोफेसर एक पैने के दो पैने ये फजूल की गल का रौला इदा का रौला पैना नहीं चाहिए BNO जाता जी उन्होंने जाके पुछ लिंदा कि तुसी पासपोर्ट विखा दो ओदे उत्ते एफ लिखा कि डबल एफ लिखा मैं तुहाडी वोट बना दिया ये मुद्दा ही कख नहीं सी बिना मुद्दे तो रौला पाया जा रहा
1: जी। अपन सो प्रोग्राम

0: ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696 ਓਇਸੇ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 587-617-4696 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਰਈਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
1: जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 647-702-2023-647-702-V23
2: लाइसेंस नंबर 10394
3: हाई क्वालिटी वाली फोटो चाहिए ने तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दिया दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जा सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन ता जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जा आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
5: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
5: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
5: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
5: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशन दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222

0: मैं जगतार सिंह जग्गी, उम्र 52 साल, फैक्टरी विच सीनियर ओपरेटर, मेरा पिछोकड़ पंजाब जिला जलंधर नाल है।
1: मैं मोहन लाल, उम्र 50 साल, फैक्टरी विच पैकिंग इंचार्ज।
2: मैं मनजिंदर सिंह मिंटू, उम्र 28 साल, ते मैं पंजाब तो कुछ समा पहला ही कैलगरी आया हाँ, ते मेरा पिछोकड़ है मोगा।
3: मैं तारिक मोहम्मद, उम्र 45 साल, मेरा पिछोकड़ लाहौर पाकिस्तान, ते मैं फैक्ट्री बतौर सुपरवाइजर काम करदा।
4: ए सी अज दे साडे किरदारां दी इंट्रोडक्शन। हुण आप नूं लै चलदे हां लंच रूम विच, आओ सुनदे हां अज इन्हां दी लंच रूम दे विच टेबल ते केड़े केड़े जज्बात ते मजाक परोसे जा रहे हन।
5: ओए मिंटू, ओ तू तीजी बार माइक्रोवेव दा टाइमर 2 मिंट ते ला दिता। ओए भरावा, तू परौंठा गर्म कर रहे के बकरा रहंदा? ओ पूरे लंच रूम च तेरे आलू वाले परौंठे दे धुएं ने ओ स्मोक अलार्म चला देने इत्थे।
2: गैरी पाजी, की दसा, दिमाग ही ठिकाने ते नहीं है अज। पंजाब तो बीबी फोन ते रोज कहंदी सी कि परौंठे चंगी तरह सेक के खाई, ठंड विच ढिड खराब ना हो जावे। नाले पाजी, अज सवेरे ही घरों बापू जी का फोन आया, मन इना उदास है कि खान का दिल ही नहीं करता।
0: ओ की गल हो गई मिंटू पुत्रा, खैर सौखा पंजाब, तेरे माता पिता ठीक है? ओए अज सवेरे सवेरे फोन आया, कोई खास गल है?
2: जग्गी पाजी, ठीक तो सब है, पर छोटे भरा दियां कॉलेज दियां फीसा भरन वालियां ने उपरों पिंड वाले मकान की छत चोन लग पई सी। बापू जी कहिंदे बारिशां तो पहला लेंटर पाउणा पैणा। मैनूं समझ नहीं आउंदी इत्थे खर्चे पूरे करां, रेंट देआं कि पंजाब पैसे भेजां। रातां दी नींद उड गई है।
3: यार मिंटू, तू हले नवा नवा आया है इस मुल्क विच, शुरू शुरू विच सब नाल इहो हुंदा है। मैनूं याद है जदों मैं 2012 विच लाहौर तों कैलगरी आया सी तां मेरी जेब विच कुछ $500 सन। पिछे अब्बा जी दी तबीयत खराब हो गई सी, मैं रातां नूं रो रो के दुआवां मंगदा हुंदा सी, पर हिम्मत चाहीदी। इह परदेस आ मेरे वीर, इह पहला इंसान दा इम्तिहान लैंदा है, फिर रास्ते खोल दिंदा है।
6: तारिक भाजी, तुसी 2012 दी गल करदे हो, इत्थे तां 2026 च वी हालात उही ने। मैं अज 10 सालां चो कनेडा च धक्के खा रहा, हर महीने सोचदा इस वार कुछ बचत हो जाएगी, पर जिवें ही पे चेक आउंदा अद्धा रेंट विच, अद्धा कार इंश्योरेंस विच ते ग्रोसरी जुट जांदा। कल मेरी घर वाली कहिंदी कि बच्चियां ने समर कैंप भेजना, पर जदों फीस देखी तां मैं बहाना बनाता, इस वार असीं आप घूमण जावांगे, अपने जवाकां कोले झूठ बोलना पैंदा। सच्ची दिल रोंदा यार।
1: छोटे भाई दीप, इह सिर्फ तेरी जां मिंटू दी कहानी नहीं है, असीं सारे इस किश्ती विच सवार हां। मेरी बेटी हुण यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जाण दी तैयारी कर रही है, उसकी पहले साल दी फीस देख मेरे पैरां हेठों जमीन निकल गई सी। पर फिर मैं सोचिया, असीं इत्थे आए किस लई सी? अपने लई नहीं, अपने बच्चों के भविख लई। जे असीं अज थोड़ी तकलीफ सह लवांगे तां कल नूं इह बच्चे किसी चंगे मुकाम ते पहुंचणगे, ते इहो साडी सब तों वड्डी कमाई है।
4: वारिक गल्लबात दे विचकार बाहरों गड्डी आके रुकती है, घर का मुख दरवाजा खुलता है, अंदर दाखिल हुंदे ने वड्डा पुत्र हैरी, छोटा पुत्र जस्सी अते हैरी दा साला करमा, जो 2 महीने पहला ही पंजाब दे जलंधर शहर तो कनेडा उतरिया है। करमे ने सिर ते मोटी ऊनी टोपी पाई हुई है, गल च मफलर लपेटिया है ते ओ ठंड नाल कंब रहा है। बादा अगला दृश्।
7: हाय मेरा भाई, नी ठंड होए थे मर गए होए। ससरी का बापू जी, ओ भरावो, एक कैलगरी दी हवा है जां किसी कोल्ड स्टोरी दा पक्खा चल रहा? मैं ता सिर्फ 5 मिनट लई बाहर गड्डी दे ट्रंक चो समान कढ़न लगा सी, ओ मेरियां ता उंगली सुन्न हो गईयां, इंज लगदा जिवे उंगलां टुट के इत्थे डिग पैणगियां।
8: ओए छोटे वीर करमिया, तू तो हुणे रोण लग पिया, अजे ता इह स्प्रिंग दी गुलाबी ठंड आ, जदों जनवरी फरवरी दे महीने -35 नाल शनुक हवावां बंद होके कोल्ड वेव आउंदी है ना, उदों बंदे दे नक दा पाणी जम जांदा। तू तां पंजाब च जलंधर बैठा वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा हुंदा ई, मैं तां कनेडा जाके स्नो बोर्डिंग करांगा।

0: वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी। इत्थे सारे लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, अज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
1: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट। सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। इह सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
2: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
1: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनी